0: सच सच बताओ, उस दिन गन अपने सर पर क्यों रखी?
1: पता नहीं, सिक्स सेंस, इंट्यूशन। मुझे बस इतना पता था कि तुम मुझे बचा लोगे। आई बिलीव इन यू।
0: पर